0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक

0: अवसर पैदा किया है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विम्बल्डन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विम्बल्डन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्ट्जमा हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हामीलाई एफएम कञ्चनजंघा 103 मेगाहर्ज अनि न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। समय बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार बिहानीको 7:05 भइरहेको छ र यो समय हो कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको, जस अन्तर्गत हामी श्रोतागणलाई मनोरञ्जन गराउने गर्छौं विभिन्न पुराना सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू सुनाएर। श्रोता, कार्यक्रमको यो पहिलो प्रस्तुति सुनाउन लागिरहेका छौं सन् 1961 सालमा निर्मित चलचित्र हम दोनोबाट। देवानन्दद्वारा निर्मित अनि अमरजीतद्वारा निर्देशित यस चलचित्रका संगीतकार हुनुहुन्छ जयदेव। देवानन्द, नन्दा अनि साधनाको यस चलचित्रमा मुख्य भूमिका रहेको छ। यो चलचित्र ताराशंकर बन्द्योपाध्यायद्वारा लिखित उपन्यास उत्तरायणमाथि आधारित छ। त श्रोता, स्वीकार्नुहोस् कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीजको यो पहिलो प्रस्तुति कलाकार मोहम्मद रफी अनि आशा भोसलेको युगल स्वरमा। गीतकार हुनुहुन्छ साहिर लुधियानवी।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
6: श्रोतागण, आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रको बिहानी प्रसारण सेवाबाट सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडीज, र अब यो अन्तिम प्रस्तुति सुनाउन लागिरहेका छौ सन् 1973 सालमा निर्मित चलचित्र जोशीलाबाट। गुलशन राईद्वारा निर्मित अनि यश चोपड़ाद्वारा निर्देशित यस चलचित्रका संगीतकार हुनुहुन्छ आरडी बर्मन अनि गीतकार साहिर लुध्यानवी। देवानन्द, हेमा मालिनी अनि राखीको यस चलचित्रमा मुख्य भूमिका रहेको छ। यो चलचित्र जेम्स ह्याडली चेजद्वारा लिखित उपन्यास सक ट्रिटमेन्टबाट प्रेरित थियो। त श्रोता, स्वीकार्नुहोस् यसै चलचित्रबाट लिएको यो गीत कलाकार किशोर कुमार अनि आशा भोसलेको युगल आवाजमा।

0: हजुर श्रोता, यसैको साथ आज पनि कार्यक्रमबाट विदा लिने समय भइसकेको छ।
1: हजुर, भोलि बिहान फेरि यस्तै जानकारीहरू बटुलेर तपाईँहरू समक्ष आउनेछौ प्रणाम सिक्किम कार्यक्रम लिएर। तबसम्मको लागि हामी दुई कार्यक्रमबाट विदा चाहन्छौ।
0: नमस्कार।
2: श्रोता, हितेन्जेल प्रस्तुत थियो विविध जानकारी साथै मनोरञ्जनले भरिएको ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार र त्यसपछि आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सेवा सिलोङ केन्द्रबाट।
3: बारिशकै पानीकी एक एक बुन्दको हामी बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षाका बुन्द बुन्द पानी हम मिलकर के बचाए।
4: चल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरे आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विम्बलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नुस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के सम्पन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
5: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
7: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
5: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
7: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
5: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
8: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
9: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
7: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बीओपीएस का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज्य की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर एक विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट एक रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को हवा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया एंड न्यूजीलैंड साइन 5 MOUs इन की एरियाज इंक्लूडिंग डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री टू बूस्ट इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
7: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report from Auckland, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News.
6: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
8: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
6: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Mr. Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Welcoming Prime Minister Modi, Mr. Luxon said, "It was a pleasure and an honour to host him," adding that the visit reflects the growing strength of bilateral ties.
9: This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity, and I'm therefore delighted to welcome you here. Thank you for the relationship and thank you for what you've put into it personally. I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. Very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here.
6: Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
10: Highlighting the growing economic partnership between the two countries, Prime Minister Narendra Modi said the free trade agreement was concluded in a record 9 months and expressed confidence that the bilateral trade would double by 2030. He welcomed New Zealand's target of investing $20 billion in India over the next 15 years, describing India as not only a market but a launchpad for global growth. The Prime Minister invited New Zealand businesses to invest in manufacturing, technology, agri-tech and innovation. He also proposed greater exchange of young business leaders under the age of 35 to strengthen future economic cooperation between the two countries. Manju Meena for Akashwani News, Auckland, New Zealand.
6: In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Modi arrived in Auckland yesterday on the third and final leg of his three-nation tour after concluding his successful visits to Australia and Indonesia. The Indian Navy is all set to commission its sixth project, 17A Indigenous Stealth Frigate Mahendragiri F-38, into its Eastern Fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defence self-reliance and indigenous warship construction. Addressing the naval personnel in Vishakhapatnam during Bada Khana on the eve of the commissioning ceremony, the Defence Minister reaffirmed India's stand as the primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. We have more from our correspondent.
11: Designed by the Indian Navy's Warship Design Bureau and built by Mezagon Dockship Builders Limited in Mumbai, Mahendragiri is a state-of-the-art stealth frigate equipped with advanced weapons, sensors and electronic warfare systems. The warship is capable of undertaking anti-air, anti-surface and anti-submarine operations. It can also carry out maritime security protocols, search and rescue missions, humanitarian assistance and disaster relief operations, and sustained deployments in the Indian Ocean region. With over 75% indigenous content, the frigate reflects the government's push for self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. The government says its induction will further enhance the Indian Navy's operational capability and reinforce India's position as a leading indigenous warship building nation. Allu Murli, Akashwani News, Vishakhapatnam.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on EIR app. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal. The Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security and only personnel trained by the Central Industrial Security Force or CISF should be deployed. He directed that training at the Port Security Training Institute should begin at the earliest by utilizing the existing infrastructure. A report.
2: The Bureau of Port Security is being established as a statutory body under Section 13 of the Merchant Shipping Act 2025. To be headed by a Director General, the Bureau will function under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. It will be responsible for regulating and inspecting the security of ships and port facilities. The Bureau will also ensure the timely collection, analysis and sharing of security-related information with a special focus on cybersecurity. A dedicated division will safeguard the IT infrastructure of ports against cyber threats. With Anupam Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
6: The Ministry of Coal has opened the bids for the 15th round of the commercial coal blocks auction, conducted along with the second attempt of the 13th and 14th tranches. The Ministry said that a total of 21 bids were received for 8 of the 23 coal blocks offered in these rounds, reflecting strong industry participation in India's commercial coal mining framework. A total of 16 companies participated in the auction round. U.S. President Donald Trump has said Washington and Tehran have agreed to continue talks despite a recent escalation of hostilities, but he firmly declared that the ceasefire reached between the two sides last month was over. President Trump, in a social media post, said Iran has asked to continue talks and the U.S. agreed to do so. The United States also stepped up demands that Iran stop attacks on ships in the Strait of Hormuz, where recent hostilities have pushed oil prices higher. The death toll in Venezuela's devastating twin earthquakes has crossed 4,000. Venezuelan Parliament Chief Jorge Rodriguez wrote on social media platform that at least 4,118 people were killed and 16,740 were injured in back-to-back 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes, which hit the South American country on the 24th of June, flattening entire districts in the coastal state of La Guajira. Thousands more are listed as missing. Back home, the India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. The weather agency has forecast very heavy rainfall condition over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Ladakh and Jammu and Kashmir during the next 5 days. In Delhi, IMD predicted very light to light rainfall condition accompanied with thunderstorm and lightning during the day. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. In the remaining quarter-finals, Norway will face England at Miami Gardens tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Defending champions Argentina will take on Switzerland in the fourth quarterfinal at Kansas City tomorrow. In Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchova will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. Both players are chasing their maiden Wimbledon crown. Muchova, who will be appearing in her first Wimbledon

0: यदिन्जेल श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको थियो चलचित्र साजनबाट कलाकार कुमार सानु अनि अल्का याग्निकको युगल आवाजमा रहेको यो गीत।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
3: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: एक्सप्रेस श्रोतागण कार्यक्रम ताजेतरानीलाई अघि बढाउँदै अब प्रस्तुत छ यो अघिल्लो गीत चलचित्र जन्नत टूबाट कलाकार केके को आवाजमा।
1: तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम कह नहीं पा रहे हो।
2: बस एक बार गले से लगाना चाह रहा था बस।

0: भाई डिसाइड कर लिया।
1: जानवी तो जान है, जहां है जन्नत है। रघुवंशी और मंगल सिंह भाड़ में जाओ तुम लोग। अब पैसे कमाऊंगा और जानवी को लेकर निकलूंगा।
2: मूवमेंट ही नहीं हो रही है तो क्या बताऊं सर जी? उस कांड के बाद कोई डील वील नहीं हो रही है।
3: तो कोई प्लानिंग नहीं कर रहा?
4: हाँ? मेरा चूतिया तो नहीं बना रहा तू?
2: अरे क्या बात कर रहे हो आप सर
4: जी? चल फिर कुछ खबर आती तो फोन कर मांगो।
2: हाँ ठीक है रखता हूँ।
5: ठीक से छुपाना उसे।
1: चूतिया तो बना रहा हूँ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दिल का मेल बॉक्स आपके लिए। स्वागत करती हूं मैं कुसुम। इस कार्यक्रम में आप अपनी मेल और संदेश के जरिए पहुंचाते हैं हम तक अपनी पसंद और हम सुनवाने की कोशिश करते हैं आपकी पसंद के गाने। तो चलिए जल्दी से आप हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। मेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। फिलहाल पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता तन्या की पसंद पर फिल्म परिंदा से। कविता तन्ना आप सुन रही हैं कार्यक्रम को, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी पसंद का गीत आपके लिए ये रहा।

बहुत सारे साथियों के संदेश हम तक पहुंचते जा रहे हैं। देर न करते हुए मैं सभी के नाम शामिल करने की कोशिश करती हूं। मारहरा दरवाजा एटा से हमें संदेश भेजता है नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अशफ अब्बासी, रसीद वारसी, किदवई नगर शिवपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुम खान, इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का भी संदेश हम तक पहुंचा है। नमस्कार भेजते हैं मजनू कटिला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का भी संदेश हम तक आया है। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेन महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे भी हमें सुन रहे हैं, संदेश भेजते हैं। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश आया है एडवोकेट ममता मोदी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, दिल का मेल बॉक्स, अच्छा रामगढ़ कैंट से लिख रहे हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर तसीम कौसर, और ये भी हमें संदेश भेजते हैं। और हम इनकी पसंद का गीत सुन रहे हैं, जिला खरगोन सनवा मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा और समस्त वर्मा परिवार का।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग

0: टेक्निक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा।
2: ध्यान रखना बेटा।
3: हर माता पिता की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन आज बच्चों के आसपास कई खतरे मौजूद हैं। मानव तस्करी, ऑनलाइन गेमिंग स्कैम, ऑनलाइन ग्रूमिंग, शोषण और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं।
4: बच्चों को अजनबियों से सावधान रहना, ऑनलाइन निजी जानकारी साझा न करना, अपने माता पिता का फोन नंबर याद रखना और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत मदद मांगना सिखाएं।
3: आपकी एक सीख आपके बच्चे की सुरक्षा बन सकती है।
4: किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें।
3: आपकी जागरूकता हमारी सतर्कता, बच्चों की सुरक्षा।

जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है दिल का मेल बॉक्स, और आपके दिल का मेल बॉक्स खुला हुआ है। बहुत सारे खत, बहुत सारे संदेश हम पढ़ पा रहे हैं। ये जो संदेश है वो आया है कस्बा गुन्नौर यूपी से, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन फरहान, फारिया ताहिरा का है। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेजते हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और ये संदेश है महाराष्ट्र से, परभणी महाराष्ट्र से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रगेश संघई, प्रीतेश संघई का। जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिक्स डिकेस्ट्रो का। और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा, पूजा परिहार भी हमें संदेश भेजते हैं। बबलू कश्यप, सलीम अख्तर, सिराज मिथुन, नवाब अहमद, अशरफ अली, दिल्ली से ये संदेश हम तक पहुंचा है। और कस्बा गुन्नौर से अभी नाम पढ़ चुकी हूं, फारूक अली और परिवार के सदस्य। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम उन्ना का भी संदेश हम तक पहुंचा है। राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, और पिंकी स्वर्णकार, मुन्ना भाई स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पिहू स्वर्णकार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ये संदेश है वीरम गाम गुजरात से, अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश सन्नी भावसार और इनके परिवार के सभी सदस्य हमें संदेश भेजते हैं। बालू छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और इनका पोता है मास्टर अल कबीर, इनका भी संदेश हम तक पहुंचा। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ भी हमें संदेश भेजते हैं। इंद्रनगर भावरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा, जगदीश देवांगन का भी संदेश हम तक आया है। राजेश कुलकर्णी, गौरी कुलकर्णी, राघव कुलकर्णी, ये हैं पुणे महाराष्ट्र से, ये भी संदेश हम तक पहुंचा है। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, लक्सर हरिद्वार, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें संदेश भेजते हैं। विजय सुरलकर, रतनमाला सुलरकर, कुमकुम गुड़िया, मोताला महाराष्ट्र से हमें संदेश भेजते हैं। बबलू कश्यप का संदेश मैं पढ़ चुकी हूं, आपका भी दो दो बार आया है। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा का भी संदेश हम तक पहुंचा है। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक का भी संदेश हम तक आया है। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के समस्त जो सदस्य हमें संदेश भेजते हैं वो हम तक पहुंचा है। और अगला गीत जो हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि आज अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिवस है, तो हम सबकी ओर से, एफएम गोल्ड की ओर से अभिनेता कुमार गौरव को जन्मदिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कस्बा बिलराम गेट से इरशाद अहमद शाह की फरमाइश पर हम सुनते हैं फिल्म लव स्टोरी का ये गीत। और क्योंकि कुमार गौरव का जन्मदिवस है इसलिए हम सबकी ओर से ये शुभकामनाएं उनके लिए।

और अब एक बार फिर से आपके दिल के मेल बॉक्स की ओर हम बढ़ते हैं। ये संदेश हम तक पहुंचा है मोताला महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, गौरी सुरलकर और आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सरिकाली खान का भी हमारे पास संदेश पहुंचा है। नईम खान, अकरम निसार का भी संदेश हम तक पहुंचा है। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानू, एलजा नायब और लड्डू भी हमें संदेश भेजते हैं। अनवर साबरी, शन्नू साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, दाऊद सराय सहारनपुर से हमें संदेश भेजते हैं। मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन भी हमें संदेश भेजते हैं। सोफापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ भी हमें संदेश भेज रहे हैं। सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, नाजिया इब्राहिम का भी हमें संदेश पहुंचा है। सादुर शहर से, राजस्थान से रामकुमार रेवाड, चंद्रकला रेवाड भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बाबू डब्बू का भी संदेश मेल हमें पहुंचा है। मोताला महाराज से विजय सुरलकर, जिनका संदेश मैं शामिल कर चुकी हूं, एक बार फिर से आया है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमन, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, विट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेजते हैं। और अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं जिसे हमें संदेश में भेजा है पसंद अपनी, खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू, इनकी पसंद का ये गीत बैजू बावरा फिल्म से।

और साथियों जल्दी जल्दी से आपके नामों को शामिल कर लिया जाए क्योंकि समय कह रहा है कि अब बहुत थोड़ा रह गया है। ये संदेश हमें अभी आया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना का हमें अभी मिला है संदेश। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, मलियान सरदना मेरठ से हमें संदेश भेजते हैं और तारीफ भेजते हैं। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, बहुत बहुत शुक्रिया। और संदेश भी हमारे पास है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह का भी संदेश हम तक पहुंचा है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना भी हमें संदेश भेजते हैं। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, ठाकुर साहब, ममता मोदी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर तस्नीम कौसर का भी संदेश हम तक पहुंचा। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव, गरिमा नई दिल्ली से संदेश भेजते हैं। असम से हितेंद्र दास का संदेश हम तक पहुंचा है। और साथियों आज है उमा देवी यानी टुनटुन का बर्थडे, तो आइए हम उनके बर्थडे पर, बहुत सारे साथियों ने शुभकामनाएं दी हैं, तो आइए उनका एक गाना जो फिल्म दर्द का है, जो सबसे फेमस गाना है, ये सुना जाए।

हैप्पी से गीत के साथ ही दिल का मेल बॉक्स यहीं पर बंद करते हैं, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम में मैं कुसुम वाराणसी की तस्वीर लेकर एक बार फिर से आपके साथ रहूंगी। फिलहाल आइए जुड़ते हैं समाचारों से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। ये आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजेलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open and prosperous region. They also emphasised the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity and the rules-based international order. The two leaders welcomed the conclusion and signature of a balanced, comprehensive and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement. They agreed to work together to ensure its early entry into force and effective implementation. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
2: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added, this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal. The Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security and only personnel trained by the CISF should be deployed. In the United States, the Trump administration today imposed a fresh round of sanctions on Iran, targeting individuals and financial networks linked to the country's leadership in response to Tehran's attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz earlier this week. The latest measures mark another escalation in Washington's campaign against Iran, following a series of retaliatory steps that have included U.S. strikes on Iranian targets and the withdrawal of a sanctions waiver that had allowed Tehran to sell oil. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States, last night. The IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, तस्वीर कार्यक्रम में आज हम देश की जिस खूबसूरत जगह की तस्वीर बनाने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी वाराणसी। विश्व के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी हजारों सालों से ज्ञान और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ पर आते ही आपको इतना दैवीय महसूस होगा ना कि आप कभी भुला नहीं सकेंगे। तो चलिए तस्वीर बनाते हैं वाराणसी की, साथ में मैं रहूंगी कुसुम। अभिजीत और सोनू निगम की आवाजों में ये गीत है फिल्म मुकाबला का।

जी हाँ, आइए चलिए चलते हैं वाराणसी, जिसने विश्व को दिशा देने का काम किया है। इस शहर का महत्व तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आयुर्वेद की खोज यहीं पर हुई। श्रीमती एनी वेसेंट ने अपनी थियोसॉफिकल सोसाइटी का केंद्र इसी शहर को रखा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं पर की। प्लास्टिक सर्जरी की खोज यहीं पर की गई। हजारों आध्यात्मिक रचनाओं का केंद्र रहा यह शहर, अपने भी जहां इतिहास की अनेक धरोहरों को समेटे हुए है, तो वहीं अपनी मिट्टी में एक दिव्य शांति की महक भी समेटे हुए है। तो आप वाराणसी में कहां कहां घूम सकते हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद जो हमने लिया है फिल्म सिर्फ तुमसे, आवाजें उदित नारायण की।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूटकर भी खामोश और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी। कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद हुआ। वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए उसमें, कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है। जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है। कौन है हीरोइन पर्दे पर, ये भी बताइएगा और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चले। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है जब इसकी

चितचोर फिल्म का गाना था येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविन्द्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्योहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं जहां एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और जरा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध।

भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम पूछिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरू सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का जमाना बड़ा गजब का है, जरा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। जरा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए, उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या न के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जरूर बताइए और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहां पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाश वाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है, चुप न बैठ कर हमारे दिल ने कुछ कहा, कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया। भाई आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया, करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा। और एक श्रोता ने लिखा है, तुम रूठ ही रहो मैं मनाता रहूं, ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानिया रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी। और एक श्रोता ने लिखा है, देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहां जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए। फिल्म का नाम, गीतकार का नाम आपको बूझना है, पहली जरा कठिन है।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, न फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे, लेकिन गुस्से में प्यार अबलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे, न रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा न करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूं तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूं तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूं, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूं, अखबार भी पढ़ लेता हूं, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूं। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूं तो चुप हो जाती हूं, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाए और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन पर्दे पर।

कौन गा रही है ये गाना और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूं तो न मनाती हूं न मनुहार करवाती हूं। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, न मैं मनाऊंगी न तुम, मतलब मैं न मैं रूठूं न तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारिख है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो जरूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहां इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ही हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई

गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फेहरिस्त दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई, और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है, तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत जरूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास खास तौर से टीन एज बच्चे जो पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना जरूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह जरूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुजुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिल लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों

तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति, तन्हाई, बेबसी, मान मनवल, हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफर बाकई खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद्व हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो, कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

0: आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की, किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज। द हेडलाइंस: India and New Zealand elevate ties to strategic partnership, set to double bilateral trade to 35,000 crore rupees by 2030. Prime Minister Narendra Modi says Indian community across New Zealand is a vital part of the shared journey among two nations, addresses Indian diaspora in Auckland. Defence Minister Rajnath Singh commissions indigenous stealth frigate INS Mahendragiri, says India building a strong, self-reliant and future-ready defence force. BRICS Ministerial Declaration 2026 adopted to strengthen technological and innovation-driven cooperation in transport sector. Typhoon Bavi

मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं, करूं? हां कहने में क्या जाता है। हमने कुछ समय पहले हमारी इंडियन डायस्पोरा के बच्चों के लिए एक नया प्रयोग किया है। हमारे बच्चे भारत को समझें और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे,

0: में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लीड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।

0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की यह बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर

0: खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चलीं और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रूपये से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, यस प्रसारणलाई तपाईहरूले 103 मेगाहर्ज कञ्चनजंगा एफएम कञ्चनजंगा साथै न्यूजन एआईआर मार्फत पनि हजुरहरूले सुनिरहनु

0: हुनुहुन्छ नेपाली आधुनिक कार्यक्रम नेपाली आधुनिक कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त हुँदछ। हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौँ। श्रोता अब सुन्नुहुनेछ आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट हिन्दी अनि अंग्रेजी भाषामा समाचार प्रतीक्षा साँझमा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेन्द्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीति साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा

0: को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्पों पर आधारित हैं। श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है, इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित ये 2 दिन की बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों में पुस्तकें पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्वकप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है स्मृति रेखा तारेनिया।
2: भारत की सांस्कृतिक विरासत जितनी

0: विविध और समृद्ध है उतनी ही जीवन भी। विशेष रूप से ओडिशा की लोक संस्कृति, उसकी लोकगीत, लोक कथा और परंपरा, इन्हीं परंपरा को अपनी लेखनी और समर्पण से नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले ओडिशा के गौरव श्री महेंद्र मिश्रा जी व विशेष रूप से आदिवासी मौखिक परंपरा, लोक कथा और गीतों के संरक्षण तथा मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें संबलपुरी लोक संगीत को न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। उन्हें उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
1: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: सर आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापाली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में, प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर ऐसा लगा कि इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकांत छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवारनबा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ जो सामीप्य है और जो संपर्क है उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के तरफ मेरा रुझान बढ़ गया।
1: जी सर।
2: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
1: सर आपने जैसे बताया कि ओडिशा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारे, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि ओडिशा के सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ओडिशा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया?
2: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं। एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक ओडिशा का उपकल जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आधा जंगल है और पहाड़ पर्वत है जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो मेरे घर में वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा से उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था और बाहर जो मैं आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति राजनीति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि ओडिशा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुल प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
1: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है, एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वह कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
2: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, सरसों का तेल, किरोसिन और एक टॉर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के। अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था, सब नारी पुरुष सब मिलके ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारे गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
1: अब वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
2: कहीं जाए

0: ने इसका हिंदी अर्थ होगी, आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है। ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। तो ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तो लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होकर लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं, सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है, और बच्चे हो या बूढ़े हो।

0: या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है। ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है, और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो, बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण ये है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत, और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं, और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारे चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है, और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुँचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी करता है, और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए, बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं, वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाय लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

3:25 स्वागत आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 रेडियो स्टेशन के साथ। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

0: शरारती है। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक जी। जिस तरह मुझे अभी बहुत समय के बाद एक एहसास हुआ कि मुझे गीत सुनना चाहिए और अपने अपनों को सुनाना चाहिए, तो पहला गीत मैंने आपकी नजर कर दिया है। इसी तरह अगर आपके मन में भी कोई थॉट आ रहा है, कोई गीत ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आज सुनना बनता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं fmgoldaird@gmail.com। एक बार दोबारा सुन लें आप fmgoldaird@gmail.com और यहां से अब आपके जो मैसेजेस हैं उनका सिलसिला शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, आप खुश हैं तो भी हमें मैसेज कीजिए। अगर आप आज बहुत उदास हैं, कुछ है दिल में हलचल, कुछ जहन में फितूर आ रहा है, कुछ भी है, आप अकेला रहना चाहते हैं, कोई गीत सुनना चाहते हैं, तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं fmgoldaird@gmail.com। और अब जो गीत हमने आप तक पहुंचाना है, आप सब तक पहुंचाना है, वो तो आप तक पहुंचेगा ही, लेकिन किसी खास के लिए भी है। आज किसी का जन्मदिन है जिनका नाम मैं भी लूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत खूबसूरत सा शेर उनके लिए कहूंगी कि हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। आंखों की बात की है, रोशनी की बात की है, क्योंकि आज डॉक्टर यशोदा लोहिया जी का जन्मदिन है। वो एक अस्पताल में बतौर आई सर्जन कार्यरत हैं और आज उनके बेटे डॉक्टर दीप और उनकी बेटी शिखा और उनकी दो प्यारी प्यारी बच्चियों और उनकी मुंह बोली बहन सीमा की ओर से उनको जन्मदिन की, बर्थडे की बहुत बहुत बधाई है। आप बहुत प्यारा कार्य कर रही हैं, आप लोगों को रोशनी जो है उसे मेंटेन करना भी बताती हैं, क्योंकि अब ये बरसात का मौसम आ गया है तो सभी डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशली आई स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आंखों को बचा कर रखिए, क्योंकि बारिश में भी आंखों पर असर पड़ता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ आंखों की होती हैं, मौसम के हिसाब से होती हैं। तो बहरहाल हम बीमारी की बात नहीं करते हैं, आज हम एफएम गोल्ड की तरफ से डॉक्टर यशोदा लोहिया को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके दोनों बच्चों ने हम तक ये संदेशा पहुंचाया कि उन्हें एक गीत बहुत बहुत पसंद है, यानी उनका पर्सनल फेवरेट है। तो आइए सुनते हैं उनका पर्सनल फेवरेट भी, हमारा फेवरेट भी, आप सबकी पसंद भी। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर यशोदा लोहिया।

और आइए अब आपके संदेशों को और आगे बढ़ाते हैं। और हमारे पास स्वर्ण सिंह जी का ये संदेश आया है, लोहागढ़ से आया है, गांव लोहागढ़ से। स्वर्ण सिंह गिल हैं, दलजीत सिंह जी हैं, राजदीप सिंह हैं, इनके साथ गुरनूर हैं, गुरलाल हैं, अब थोड़े टंग ट्विस्टिंग वर्ड्स हो जाते हैं ना, और अविराज सिंह जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और इसी तरह भारत भूषण जी, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण और संस्कृति और पौरुष हैं, इन्होंने बेंगलुरु से हमें संदेशा भेजा है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत संदेशे के लिए। यहां पर सतीश अनेजा जी चंडीगढ़ से हमें मैसेज करते हैं, इनके साथ बिमला अनेजा है और इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है, गाना बहुत प्यारा है आपका, देखें चला पाते हैं कि नहीं। कोल्हापुर से संभाजी सुतार हैं, चेतन हैं इनके साथ और सारिका सुतार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। यहां पर प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ पलारी से हमें संदेशा भेजा है। इसी तरह कुमकुम जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपका भी संदेशा आया है। विजय सुरलकर हैं साथ में, रत्माला हैं, कुमकुम हैं और मोताला महाराष्ट्र से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी तरह आप हमें मैसेज करते ही, आपके मैसेज हमें ऊर्जा देते हैं। और इसके साथ साथ संभाजी हैं, चेतन हैं और सारिका सुतार हैं, इन्होंने कोल्हापुर से हमें संदेशा भेजा है। आप अपना जो संदेशा है इसी तरह हमें मैसेज करते रहिए। मैसेज करने के लिए आपको जो पता है वो मैं बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और अब बारी है एक और खूबसूरत गीत की। 1973 में ये फिल्म आई और जो गीत है वो कुछ यूं है, देखिए कितनी खूबसूरत बांसुरी बजाई गई है।

0: अभिमान फिल्म के इस गीत के बाद मेरी नजर आपके मैसेजेस पर है, पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ आज शनिवार की दोपहरी सीमा वर्मा, और हमारे दरमियान जो कार्यक्रम है उसका नाम है मन भावन, और उस तक पहुंचने का जो पता है आप भली भांति जानते हैं, फिर भी जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया उन्हें बता दूं, FM गोल्ड AIR दिल्ली @gmail.com आप अपना

जो संदेशा है, अपनी फरमाइश है, आप हमें इसमें भेज सकते हैं। कोई दिलचस्प किस्सा जुड़ा है तो वो भी हमें बताइएगा, मजा आएगा सुनने में। जमशेदपुर से हमारे पास हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया का ये संदेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए। और पंजाब से हमारे पास परमिंदर सिंह रंधावा और इनके साथ लखनपाल जी हैं और सुरेंद्र कौर रंधावा हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बोधराज खोरवाल जी बहुत बहुत नमस्कार, उत्तम नगर दिल्ली से आपने संदेशा भेजा है और आपके साथ कमला रानी है, गीतिका है और भानु प्रकाश है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपने संदेशे fmgoldaiadelhi@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से ये मैं आपका देखिए दोबारा आपने जो भेजा है ना, अभी मुझे एकदम से याद आ गया कि मैंने अभी तो आपका ये लिया। अब ये पैराग्राफ में जब आप लिखते हैं तो मैं आपके नाम ही खोजती रह जाती हूँ, इसीलिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया आप ना एक के नीचे एक अगर नाम आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा। पैराग्राफ में ढूंढना पड़ता है। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, किशु और रिधान है, ये इन्होंने संदेशा भेजा। तो उम्मीद करती हूँ अगली बार आप अपना संदेशा एक के नीचे एक नाम लिखकर भेजेंगे। मोहम्मद यासीन हाशमी साहब हैं, ये हैं नजमा बेगम हाशमी हैं, मोहम्मद तौसीफ हैं और मोहम्मद कलीम अंसारी हैं। इन्होंने हमें कहाँ से भेजा है, गुंज डुंडवारा से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है और आपके संदेशे हमें मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। जिन्होंने अपना संदेशा भेज दिया है, मैंने जिनका संदेशा पढ़ लिया है उनसे विनम्र निवेदन है कि आप दोबारा ना भेजें, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें, क्यों आप नहीं चाहते। यहाँ पर कमलकांत गुप्ता जी का भी संदेशा आया है, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी हैं और दीपा रिमझिम गुप्ता हैं इनके साथ। और आपसे एक और मैं बात कहूँ, आप अपने दोस्तों को और जो आपके अपने हैं उनको बोलिए ना कि आप भी इसमें आप मैसेज कीजिए तो एक मजा आएगा, क्योंकि अगर आप अपने किसी साथी का नाम लिखकर भेज रहे हैं और वो साथी ने आपका सुना ही नहीं है, मैसेज ही नहीं सुना है, तो फिर क्या फायदा है ना। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशानी छिम्पा और पूजा परिहार हैं, इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा। मुझे लगता है अब काफी सारे मैंने नाम जो है वो पढ़ लिए हैं और अब एक बहुत बेहतरीन गीत रफी साहब की आवाज में आइए सुनते हैं।

कई बार ऐसे होता है साथियों कि जब हम कोई गीत सुनते हैं ना, तो कुछ गीत ऐसे हैं जिसमें थर्ड स्टैंजा में फीमेल सिंगर आती हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये रफी साहब का सोलो है, लेकिन तीसरे अंतरे में तो आशा जी ने आके कमाल ही कर दिया। चलिए, इसी तरह आप के संदेश हमें मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे समय अब ज्यादा नहीं है, फिर भी fmgold@delhi.com इस पर आप हमें संदेशा भेज सकते हैं। यहाँ पर सीमा जी नमस्कार, किसने भेजा है? छत्तीसगढ़ से हमारे पास कौशल्या देवकुंजी और रोशन लाल देवकुंजी का संदेशा है, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हेमलता है साथ में और डिम्पल देवगन है, और आपने एक गीत की फरमाइश की है। जी हाँ, मॉनसून तो आ ही गया है, सावन का महीना भी बस बिल्कुल सामने ही है, तो कई बार मौसम के हिसाब से जो गीत होते हैं वो सुनने का बड़ा मन करता है। आदाब किसने हमें लिखकर भेजा है? नसीर शेख साहब हैं, आपने आदाब हमें लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा है कोई भी गीत सुना दें, फातिमा कॉलोनी यहाँ महाराष्ट्र से आपने लिखा है। नासिर शेख हैं इनके साथ, नाजिया इनके साथ हैं, साजिद इनके साथ हैं, और इसके साथ साथ अगले मैसेज की तरफ मेरी नजर जा रही है तो मैं देख रही हूं कि कृष्ण मेहरा हैं, कोमल हैं इनके साथ, किरण मेहरा हैं, कपिल हैं और कुणाल मेहरा हैं। उन्होंने हमें नमस्ते भेजा है और भिवानी से इन्होंने हमें लिखकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके संदेशे के लिए भी। बबलू ठेकेदार जी हैं, शेख सगीर हैं, शेख वजीर हैं और शेख सुहेल साहब हैं, अदनान हैं इनके साथ, विजू भाई हैं इनके साथ, और इन्होंने भी बाजार मोताला से हमें ये संदेशा भेजा है। तो अब क्या कहते हैं कि अब एक गीत सुन लेते हैं। हिमलता जी, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, आपने राजस्थान से हमें संदेशा भेजा है। जब भी गीत की बात करती हूँ एक नया सा मैसेज आ जाता है, तो चलिए जो पहला हमने जो मैसेज पढ़ा था उनकी फरमाइश है, हम सब की फरमाइश है, क्योंकि आप जानते हैं मौसम तो आ ही गया है, मानसून

नमस्कार फौजी दोस्तों, शौर्य गाथा कार्यक्रम की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं टिकिला, आपकी दोस्त इस पूरे कार्यक्रम के लिए। फौजी दोस्तों, हम आपको दैनिक गतिविधियों को अवगत कराने के लिए हम इस कार्यक्रम में कोई विशेष दिवस या सप्ताह मनाते हैं ताकि हम आपको जागरूक रख सके। ऐसे ही आज 11 जुलाई एक विशेष दिवस है। विश्व भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस दिवस की पूरी जानकारी हम देंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, पर पहले सुनते हैं कार्यक्रम का ये गाना।

फौजी दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस का मूल उद्देश्य है जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों और इसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह विश्व में 11 जुलाई 1979 के विश्व की जनसंख्या जब 5 अरब पहुंच गया था, तब से यह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। बातें और भी होंगी विश्व जनसंख्या दिवस पर इस गीत के बाद।

फौजी दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बढ़ती जनसंख्या को रोकना नहीं बल्कि लोगों को युवा सशक्तिकरण यानी युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को सही दिशा देना तथा भविष्य के लिए उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप में सक्षम बनाना भी है। बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक के संसाधनों पर बढ़ने वाले दबाव और पर्यावरण पर इसके प्रभावों के बारे में लोगों को सचेत करना भी विश्व जनसंख्या दिवस का मूल उद्देश्य है। बातें और भी होंगी पर इस गीत के बाद।

फौजी दोस्तों, प्रत्येक रविवार हम लेकर आए हैं फौजी दोस्तों के लिए खास कार्यक्रम शौर्य गाथा के अंतर्गत एक नई कड़ी, पहचाने कौन। इस कड़ी के अंतर्गत आपको हिंदी फिल्म में गीत सुनाए जाएंगे और आपसे उस गाने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपना सही जवाब हमें गाने के मध्य ही हमारे व्हाट्सएप नंबर 9434711196 पर अपने नाम और पता सहित भेजना होगा। जवाब भेजने वालों के नाम हम कार्यक्रम के मध्य ही शामिल करेंगे। तो सुनना न भूले, प्रत्येक रविवार शाम 4 बजे से 4:30 तक कार्यक्रम पहचाने कौन। अभी सुनते हैं ये खूबसूरत गाना।

खोज दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस को हर साल एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल 2026 का थीम है युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना आज और भविष्य के लिए। इस वर्ष का थीम युवाओं की अब तक की सबसे बड़ी पीढ़ी को अपने आज और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। बातों का सिलसिला जारी रहेगा इस गीत के बाद भी।

फौजी दोस्तों, आज के पूरे कार्यक्रम में हमने विश्व जनसंख्या दिवस पर बात की जो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और सुने कुछ खूबसूरत गाने। आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगी।

Bye.

0: 송로디 당염지 같이 된종 방긴면도 내림디 나 자기게 나와 슈도이 같이 롱테 강가도기 주주 컬러 텐지나 다 피삼지 주주 두동랍도게 생게 랭게즈다 아침지 잡레 열사 델레 힌디케나 네시스마나셴이 나 내림들 검주도이 투지
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना पीएमएफएमई ने देशभर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिडियम को 213.67 मीटर तदनुसार 1404 किलोहर्ट्ज को तरंगमा हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं र श्रोता समय भएको छ यस केन्द्रको दैनिक ग्रामीण कार्यक्रमको जसमा आजको विषय रहेको छ जैविक खेतीमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू।

0: দি লুঠেখা গা তুই থারি গিনে চুল ছুকিলা ডেঞ্জং পচালে সেম্বনা ডেঞ্জং জুং থং নুব বেঙ্গল কি দা পরিবহন ভবন কলকাতা না গাদি সসুই ফর ডিখর থিডেল থং সারথি সুগি ছোতাব দিচুল ডিংডিং জবি থেন ল নিয়ম গি ডিখর ডেথিন ইয়াং না রেসিপ্রোকল ট্রান্সপোর্ট এগ্রিমেন্ট তা ক্যাপইন সেছে দিচি দি কি আদি নি কি ফার ডিলেন থিন্ডিল ডিংডিং জবি করল ডেদুর বেনি ফ্যাশি ইন ডেনজং কি লাখর নুমখর চুই কোটা কাউন্টার সিগনেচার পারমিট নি তোঠা সুমলে তোঠা ঠু থেন বইন লাখর চু স্পেশাল পারমিট এখেন দিচু শিলগুড়ি লে লক হুমবে কাপ ডিল্লা ডিপা ইয়াং না প্যাসেঞ্জার্স টু লেনে ফ্যাথপসে ইন লাভ সোজা থাতালে ডেনজং কি লাখর চু রম্পু থাং মালি লামডি ক্যাপে কাপ কাউন্টার সিগনেচার পারমিট জমিংগোসে ইন সেছে দি ল নেলেন নাংজিন ডেনজং কি চচিলেম্পু প্রেম সিং তামাং কি নুব বেঙ্গল কি চচিলেম্পু শুভেন্দু আধিকারী ডিলেন লেলা কি মিনিস্টার ইনচার্জ অর্জুন সিং থং নুব বেঙ্গল কি জুং ল থুজিলেকবুল ফিব ইন দিলে চচিলেম্পু কি সেছে দি ফিয়া খিমচা আদি ফার থিন্ডেল লেম জসে ইন সেয়াং শুব নাংব ইন ডেনজং জুং কি ডিখর থং মিসের ডেলাম নামডুই লেলা কি ইন্দা দিনপে ছে চুলে ছে চুনি জা কলকাতা কি ডি থং ডিকর ডাংপো ইয়াং না টিটিএফ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরিজম ফেয়ার গত চুক নিন থারখিল চেন গত চুক চিক থেন বিন ডেনজং ডিকর ছগুর গি তাকর বচু কি ইয়াছেন ছেন বি মলেন ফ্যাব ইন ছেগুর ইয়াং না পেভিলিয়ন দি ডেনজং কি সসুই ডিকর ল তেসু ফ্যাতি গাবি চালা ইয়াং থেনব ইন তাতুই টিটেন দি সিকিম ইন্সপায়ার্স লেখু গি চচি চংদাং গি লেদেন ইন ডেনজং থংনু বেঙ্গল ল থিখেন গ্যাল খাপ কি জুংলাম চু ইয়াং না এন এইচ টেন থারিং লে ইন্দা দিনপে ছে চুসুম জা থামচে নুমখর গিন্ডিল চু ছিছে গা লে ঠোপি ছিছে চু জাং লাকথল লে কাকি ন্যাশনাল হাইওয়েস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এন এইচ আই ডি সি এল কি 20 মাইল বারদাং রি ইউএ লাম না নামসই ইয়োগ গি ফ্যাতি কাকো ইন লাপটি জুংদেন গি শেপা ফিনব ইন সে লাপো ইন কাকি থি না গিন্ডল চু ইয়েং ইয়াং না ডাইভার্ট এন এইচ 717A রম্পু রোরা থং পাকিং রানীপুল কি লাম ইয়াং গুসে থং জেন ছুংছুং লাখর চু চৌরি বোটে ডুগা পেন্ডাম সিংতাম থং রম্পু লাম ফেছে ফ্যাছুসে ইন আয়ুষ লেলা গি ইন্দা দিনপে ছে ঠুলে ইন্দা দিনপে টু ছে চুসুম জা আয়ুষ সোশ্যাল মিডিয়া প্রমোশনাল উইক লাপটি আংনে চেন গি শেপা গ চুক ইন লমা ছাকার গি নেচুল লবজাং থং গিন্ডেল সেরতক দিনঠা না আয়ুষ ক্যাম্পেন না খেনে ফ্যাশে ইন থাতুই দিনঠা দি না আয়ুষ মেনপ চুকি মিনমাং চুল মিমাং চুল থামেন ইয়াং না হোমিওপ্যাথি করল শেপ ইয়াং ফিচে ইন ডেনজং কি থামচে লে ফিডি ছুঙ্গা থিম গি মিংতাম চেন ডাংথিম মিনাক্ষী মদন রাই থারিং পাটনা থিমখাং খৌমা ইয়াং না পাটনা হাইকোর্ট লে ঠেব নাংব ইন খং কি ল দি ইন্দা টু কি ছে আলে পাটনা থিমখাং খমাং না জিপচু সে গে পে চব টাংদেন লংনে নাংব ইন টাংদেন রাই নে ডেনজং গি থাংপু ফুম হাইকোর্ট জজ থাকচে নাংকেন ইন লুংঠে কা গাতুলে থানিগি নেচুর সুজো পইন
1: নমস্কার প্রিয় শ্রোতাহরু আজ হামি গান্তোক জিল্লাকো জিল্লা সমাচারপত্র শুননেছাউ জসলাই হামরা সংবাদদাতা দিল্লিরাম দুলালে তৈয়ার পারেকা হুন র ইসলাই তপাইহরু ম বন্দনা রায়বাট শুননুহুনেছ भाषा हाम्रो सभ्यता, वेशभूषा हाम्रो संस्कृति मूल नाराका साथ नेपाली साहित्य परिषद सिक्किमले यस वर्षको 212 भानु जयन्ती भव्यताका साथ आयोजन गर्ने भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी 13 जुलाईका दिन प्रारम्भमा गान्तोकको भानु उद्यान परिसरमा मुख्य अतिथि सिक्किमका राज्यपाल ओमप्रकाश माथुरले विशिष्ट अतिथि मन्त्री अरूण उप्रेतीको उपस्थितिमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुहुनेछ। त्यसपछि श्री उप्रेतीको मार्गदर्शनमा एक भव्य शोभायात्रा आयोजना हुनेछ, जुन गान्तोक शहरको परिक्रमा गर्दै मनन केन्द्रमा पुगेर टुंगिनेछ। यहाँ आयोजना हुने दिनभरिको कार्यक्रमबारे परिषदका प्रचार सचिव हेमराज अधिकारी भन्नुहुन्छ।
2: कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गान्तोक स्थित भानु उद्यानमा बिहान 9 बजे आदिकवि भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण गरिनेछ। त्यसपछि विराट शोभायात्राको साथमा दिउँसो 12-15 बजे मनन भवन गान्तोकमा मुख्य समारोह आयोजना हुनेछ, जहाँ भानु पुरस्कार 2026 भाषा गौरव सम्मान तथा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई सेवाश्री सम्मान प्रदान गरिनेछ।
1: तुमिन लिङ्गी क्षेत्र स्तरीय भानु जयन्ती समारोह समितिले यस वर्षको प्रतिष्ठित क्षेत्रीय साहित्यश्री सम्मान 2026 साहित्यकार हेमराज अधिकारीलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 212 जयन्तीको पावन अवसरमा नेपाली भाषा तथा साहित्यको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धनमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने स्रष्टालाई सम्मान गर्ने परम्परा अनुसार समितिले यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। समितिका अनुसार वहाँको चर्चित लघुकथा संग्रह च्यातिएको जुत्ता ले नेपाली लघुकथा साहित्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ। उक्त कृति मार्फत समकालीन समाजका यथार्थ, मानवीय संवेदना तथा सामाजिक चेतनालाई प्रभावकारी कलात्मक अभिव्यक्ति दिएकाले वहाँलाई यस वर्षको सम्मानका लागि चयन गरिएको जनाइएको छ। यो सम्मान आगामी 13 जुलाई सोमबार सामदोङ स्थित सिक्किम सरकारी संस्कृत महाविद्यालयमा आयोजना हुने 212 भानु जयन्ती समारोहको अवसरमा विशेष समारोह बीच तुमिन लिङ्गी क्षेत्रका विधायक एसटी भुटियाको करकमलबाट प्रदान गरिनेछ। सिक्किम पर्यावरण पर्व 2026 अन्तर्गत लीव अ ग्रीन लेगेसी भन्ने मूल नाराका साथ गत मंगलबार मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राज्य सरकारको महत्वाकांक्षी परियोजना मिशन मिलियन ओक ट्रीज बाय 2047 को औपचारिक शुभारम्भ गर्नुभयो। वन तथा पर्यावरण विभागद्वारा बुलबुले गान्तोकमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले एक पेड़ माँ के नाम अभियान अन्तर्गत जापानी चेरी ब्लॉसम अर्थात सकुरा ओक को बिरूवा रोपेर पर्यावरण संरक्षण प्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सुन्नुहोस् गान्तोक जिल्ला संवाददाताको एक रिपोर्ट।
3: यस अवसरमा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले बुलबुले स्थित वन प्रशिक्षण संस्थानको उद्घाटन गर्नका साथै सिक्किमका लागि कनेक्ट टू फरेस्ट नामक टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1926 को शुभारम्भ पनि गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी शपथ ग्रहण गराउँदै वन प्रशिक्षण संस्थान परिसरको अवलोकन समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा वन मन्त्री पिन्छो नामगेल लेप्चाले मिशन मिलियन ओक ट्रीज बाई 2047 सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्दै राज्यको हरित भविष्य निर्माणमा यस अभियानको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभयो। यसरी नै सोही दिन ए डे फर मदर अर्थ अभियान अन्तर्गत बिहान राज्यभरि नै 7 मिनटका लागि सम्पूर्ण सवारी साधनहरूको आवागमन रोकिएको थियो। आकाशवाणी समाचार गान्तोकका लागि डिलीराम दुलाल।
1: टिबेटन सेटलमेन्ट अफिस तथा तिब्बती समुदाय गान्तोकको संयुक्त तत्वावधानमा गत सोमबार राजधानी गान्तोक नजिक चानमारीमा परम पावन 14 दलाई लामाको 91 जन्म जयन्ती हर्षोल्लास पूर्वक पालन गरियो। कार्यक्रममा सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यस अवसरमा वहाँले गान्तोक जिल्लाको चानमारी स्थित नवनिर्मित तिब्बती सामुदायिक केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्रीले परम पावन दलाई लामाको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख, शान्ति तथा मानव कल्याणका लागि निरन्तर मार्गदर्शनको कामना गर्दै विशेष प्रार्थना गर्नुभयो। आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्रीले परम पावन दलाई लामाका शिक्षाहरूले साँचो सुख बाह्य वस्तुमा नभई मानवको अन्तर्मनमा निहित रहेको सन्देश दिने उल्लेख गर्नुभयो। वहाँले करूणा, सहिष्णुता, विनम्रता र पारस्परिक सम्मानका मूल्यहरूलाई जीवनमा आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। श्री तामाङले परम पावन दलाई लामाले आफ्नो अमूल्य ज्ञान, शिक्षा र प्रेरणादायी मार्गदर्शन मार्फत सम्पूर्ण मानव जातिलाई निरन्तर आशीर्वाद प्रदान गरिरहनु भएको मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। सिक्किम सरकारको महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा दिव्यांगजन कल्याण विभाग अन्तर्गत जिल्ला महिला सशक्तिकरण केन्द्रले स्यारी क्षेत्रको कोपीबारी ग्राम पंचायत एकाईमा बिहिबार दिगो तथा आधुनिक जैविक खेती प्रवर्धन विषयक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रमको शुरूआतमा लिंग विशेषज्ञ निशा हाङमा सुब्बाले मिशन शक्ति अभियानका उद्देश्यहरूबारे जानकारी दिँदै महिलाको सशक्तिकरण तथा कल्याण प्रवर्धनमा यसको भूमिका बारे प्रकाश पारिन। अब यस जिल्ला समाचार पत्रलाई लेप्चा भाषामा पनि सुन्नुहोस्।
4: गुन न्यानबु सोङरेम आर्यम सोला लिलुङ गोपीचिङ रङमित नुम्बोङसुत गङतुक लम्नन रेन दिलीराम दुलाल लम्थुक थम्बु ल्याङदे सुत्रेम सेनोङ उ रेन्जोङसा नेपाली साहित्य परिषद निन ज्ञनेत्सा कृति नेथा भानु जयन्ती आनाम Language is our civilization, traditional attire is our culture, Nongtun plong thope machibu chandik nihungum. Latbu tsa kiti samthap lom thope jengshibu nihungum. Thope are gongtuk sa bhanu udyan ka ngunshibu nihungum. Sireka renjung sa jungpun ren om prakas mathur, kurthak ren arun upreti sa nimlet ka adi kavi bhanu bhakta acharya sa mukurem floral tribute thoshibu nihungum. Chitong tichat ka lep ka mudukbu vum alok pong thoshibu गंगतुकसा मनन केन्द्रका अपल आलेल माछ्योङ नहान वम आलोक आठेन सिक्निम सिङतेत मुन्सिबु दुनहुङ्गम ओलोन्दो मिथ्याक मिक्तन थोपे थोसिबु निहुङ्गम परिषदसा आचोर आफ्लियोत गार्नोङ रेन हेमराज अधिकारी निन लादबु थोपे रेम लियोनिन आलोम सुङहुङ्गम।
2: कार्यक्रमको पहिलो चरणमा गान्तोक स्थित भानु उद्यानमा बिहान 9 बजे आदिकवि भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण गरिनेछ। त्यसपछि विराट शोभायात्राको साथमा दिउँसो 12-15 बजे मनन भवन गान्तोकमा मुख्य समारोह आयोजना हुनेछ, जहाँ भानु पुरस्कार 2026 भाषा गौरव सम्मान तथा विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई सेवाश्री सम्मान प्रदान गरिनेछ।
4: तुमिन लिङ्गिसा भानु जयन्ती सुदलत कृषक नेपाली पिण्डक सङ्ग्रेम छिवदबु रिजनल साहित्य श्री छिलौनी छिबु निहुङ्गम छिलौनन लुङतेन रेम लुङ्गियो स्योङ लेन्तप बुसो थम्बु लेपका आदत आचोत याङने लेन्तप बुसो थम्बु रेन हेमराज अधिकारी निन दुनहुङ्गम कृषक नाङसिङ हेमराज अधिकारी निन पिथम्बु सिङ च्यातेको जुत्ता तिङसोङसा रिङमोमका तारवत बुला थम्बु उलुम्दो मिमोङका मानङानिबु आथङ दुक्तोङ पोङरेम लुङ्गे थम्बु निहुङ्गम थुपे आरे रेन्जोङ गभर्मेन्ट संस्कृत कलेज सामदुङका होसिबु निहुङ्गम उलन कृथक रेन प्रेमसिंह तामाङ निन लिभ अ ग्रीन लिगेसी नोङतेन सप सुकदाम सिक्किम इन्भाइरोमेन्ट फेस्टिभल 2026 का रेन्जोङ जुङथुक निन खाकाचा फुलिथेप कुक्यक कुङ थ्याङसिबु पेडिक माथुङ्गम थुपे आरे गङतोक्सा बुलबुलेका पुञ्जक उन्वार्त भोङसी सानिमलत काङुनुङ्गम गुलन कृथाक निन जापानिज चेरी ब्लसम याङन साकुरा ओ कुङ थ्याङुङ्गम वार्तोरेम ग्योतोङ माछ्योङ झिकाप थुलुङ युग माथुङ्गम एक पेर मा के नाम सप सुदामका वार्तो ग्योतोङ प्लोङ थाम्दुन सेनोङ।
3: यस अवसरमा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले बुलबुले स्थित वन प्रशिक्षण संस्थानको उद्घाटन गर्नका साथै सिक्किमका लागि कनेक्ट टू फरेस्ट नामक टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1926 को शुभारम्भ पनि गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीले उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीहरूलाई पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी शपथ ग्रहण गराउँदै वन प्रशिक्षण संस्थान परिसरको अवलोकन समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा वन मन्त्री पिन्छु नामगेल लेप्चाले मिशन मिलेन ओक ट्रीज बाय 2047 सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्दै राज्यको हरित भविष्य निर्माणमा यस अभियानको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभयो। यसरी नै सोही दिन ए डे फर मदर अर्थ अभियान अन्तर्गत बिहान राज्यभरि नै 7 मिनटका लागि सम्पूर्ण सवारी साधनहरूको आवागमन रोकिएको थियो। आकाशवाणी समाचार गान्तोकका लागि दिलीराम दुलाल।
4: गङतोक चानमारीका फात्सयाक चङपुत मु आछोक सोङनुन हिज होलिनेस द 14 दलाई लामा सा 91 आगे सिङिम सुङुङगम गुलन कृथाक रेन प्रेमसिंह तामाङ गुलन नुसा लिउगा चेनुङगम थोपेका रेन इन अल टिबेटन कम्युनिटी सेन्टर सा ओक्जिङ माथुङगम गुलन कृथाक नन चुनछत ओरेका आकेत आगो अल्हेपका मुबत आर्यम अनछु आर्यन सा तुनका साहु माथुङगम हिज होलिनेस सचिनलप सिगदम पुबार बोतन नोंग तकार लियोंग मलम थुबुङगम रेन्जोङ जुङदुकसा डिपार्टमेन्ट अफ वुमेन चाइल्ड सिनियर सिटिजन इन दिव्यञ्जन वेलफेयर साचोप सुकदामका सस्टेनेबल अर्ग्यानिक फार्मिङ

0: श्रोताहरूले हाम्रो यही प्रसारणलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजङ्घा एवं न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ मीना कुमारी अनि मल्लिका पोखराजको आवाजमा केही गजलहरू।
1: क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान। क्षमा हूँ, फूल हूँ या रेत पे कदमों का निशान। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें। आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कह लें।

ये नूर कैसा है राख का सा रंग पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने, गूंगी चाहत है रुसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का, एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर, ये कैसा शोर है जो बेआवाज फैला है, रुपहली छांव में बदनामियों का डेरा है, ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, एक इंतजार मुजस्सम का नाम खामोशी, और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी, दरो दीवार कहां रूह की आवारगी के, नूर की वादी तलक लम्स का एक सफरे तवील, हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं,

अकेलेपन के उसी बेकिनार सहरा में उलझी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए फिर वही मैं वही चौराहा वही बेनाम सुकूत धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा फिर से एहसास ने पहना है बेहिसी का लिबास सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से जवाब जिसका वही हैरान सी खामोशी है।

श्रोताहरूले यतिन्जेल सुन्दै हुनुहुन्थ्यो ठुम्री वादन कलाकार गिरिजा देवीबाट। श्रोता अब सुन्नुहुनेछ समाचार सन्ध्या अन्तर्गत आकाशवाणी दिल्लीबाट क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा समाचार। प्रतीक्षा साँच्नुहोला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्रप्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक चालक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436793084915523714 और 8433452014 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
5: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुआई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रुपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का 4th संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4th चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
6: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
6: Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. 15 Indian tourists were killed after a boat capsized near Vietnam's Phu Quoc Island today. The Embassy of India in Vietnam confirmed that the deceased include 13 men and 2 women. In a post on social media, the embassy shared the list of the victims, stating that the names were provided by the Vietnamese authorities. According to the embassy, 10 of the deceased were from Tamil Nadu, 3 from Andhra Pradesh and 2 from Kerala. The boat was carrying 36 people, including 32 Indian tourists, 3 crew members and 1 attendant. 21 people, including 17 passengers and 4 crew members, were rescued and admitted to hospitals. 2 survivors remain in critical condition and are receiving intensive medical care. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed condolence at the tragic accident. Expressing sadness at the boat accident, the President offered condolences to the grieving families and prayed for the speedy recovery of the injured. The Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities. Addressing a special event in New Delhi today, Union Minister for Food Processing Industries, Chirag Paswan, said the achievement is not merely a milestone to celebrate, but a strong foundation for the next phase of India's food processing growth story. Mr. Paswan also underlined that the participation of women entrepreneurs at nearly 44% of all beneficiaries reflects the true spirit of women-led development, a cornerstone of Vikasit Bharat. Union Railway and IT Minister Ashwini Vaishnav today announced plans to develop Hyderabad as a major high-speed rail hub with proposed bullet train corridors linking the city to Pune, Chennai and Bengaluru. Speaking at an industry event in Hyderabad, he said the high-speed rail network will significantly reduce travel time and strengthen connectivity among South India's major economic centres.
7: 3 high-speed bullet train corridors to Hyderabad to Telangana, which will totally change the landscape. If you see, from Pune to Hyderabad, from Hyderabad to Chennai, from Hyderabad to Bengaluru, this will become a major game changer for entire region, and Hyderabad will become the high-speed hub. This will totally change the landscape. It will bring huge amount of development. The economies of this entire region will become fully integrated.
6: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. Here with us on the news at 9. The West Bengal government has formed a 9-member committee to examine the draft bill of a uniform civil code for the state. A notification has already been published in this regard. Justice retired Ranjana Prakash Desai will be the chairperson. Former Meghalaya Governor Tathagata Roy is one of the members of the committee. Legendary playback singer S. Janki, fondly known as the Nightingale of the South, passed away at the age of 88 today in Mysuru, Karnataka, after battling age-related health issues. Spanning over 6 decades, her career saw her singing in nearly 48,000 songs in multiple languages, including Kannada, Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi. She was the voice behind generations of film stars. She collaborated with legendary music directors like Ilayaraja, M.S. Vishwanathan, E.R. Rahman, among others. She is conferred with 33 state film awards and recipient of Padma Bhushan. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that differences of opinion are natural in a democracy, but commitment to the constitution and public welfare must remain paramount. Addressing the inaugural session of the orientation and training program for members of the Bihar Legislative Assembly in Gayaji, Mr. Radhakrishnan called upon public representatives to accord the highest priority to democratic values, transparency and accountability towards the people. The chairman of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, Member of Parliament P.P. Chaudhary, today said that holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state assemblies would strengthen governance, reduce expenditure and benefit the country's economy. Addressing media persons in Goa, Mr. Chaudhary said the 41-member committee representing all major political parties is touring states to gather views from governments, political parties, constitutional experts, civil society and other stakeholders. Goa is the 9th state being visited by the committee. Union Ministry of Health and Family Welfare has launched the monthly webinar series on best practices under the National Health Mission on the occasion of World Population Day 2026. Envisioned as a year-round knowledge-sharing platform, the initiative will bring together states and union territories to present successful innovations, exchange implementation experiences, and accelerate the adoption of evidence-based practices for strengthening healthcare delivery nationwide. Iran's Supreme Leader Ayatollah Mujtaba Khamenei today vowed to avenge the death of his father Ayatollah Ali Khamenei, who was assassinated in U.S.-Israeli strikes earlier in the year, describing it as the responsibility of the nation. He also praised the massive turnout at the late leader's funeral as historic. In a message issued on the occasion of the funeral and burial of Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei declared that those responsible for the killing would not escape justice. Meanwhile, U.S. President Donald Trump threatened Iran today after the funeral of Ayatollah Ali Khamenei saw open calls for his killing. In a social media post, Trump made the comments after senior U.S. officials demanded that Iran make a public statement saying the Strait of Hormuz is open and that ships crossing the vital corridor would not be attacked any longer. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for the next 4 to 5 days. These places include Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Chandigarh, Haryana, Delhi, East Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Gangetic West Bengal, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Meanwhile, IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Himalayan in West Bengal, Sikkim and Bihar for tomorrow. In the FIFA World Cup, Norway will take on England, while defending champions Argentina will clash with Switzerland in the quarterfinals to determine the remaining semi-finalists. The third quarterfinal match between Norway and England will be played at Miami Stadium with kickoff scheduled for 2:30 a.m. Indian Standard Time. Later, Argentina will face Switzerland at Kansas City Stadium at 6:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian women's compound team of Jyoti Surekha Venam, Preetika Pradeep and Chikita Taniparthi clinched the silver medal at the Archery World Cup Stage 4 in Madrid, Spain today. The Indian trio went down 228-32 to Colombia in the final. Meanwhile, in women's individual compound event, teenage archer Preetika Pradeep produced a stunning turnaround to beat world number 11 Hazal Borun of Turkey 145-142, clinching her maiden World Cup bronze. In the historic one-off women's test at Lord's Cricket Ground in London, India was 63 for no loss in their second innings on day two when reports last came in. Earlier, England were bowled out for 170 runs in their first innings today. Amy Jones was the top scorer with 53 runs for India. Kranti Gaur took a 5-wicket haul, while Sayali Sakare and Sneh Rana scalped 2 wickets each. In men's cricket, England were 241 for 1 in 18.3 overs against India in the 5th and final T20 international of the series in Southampton when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister expressed condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of Uniform Civil Code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. That is all in the news at 9. Good night.
8: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Prime Minister's visit to New Zealand, strengthening bilateral cooperation across key sectors. The participants are Anil Trigunayath, former ambassador, and Anubha Rohatgi, anchor.
9: Ambassador Trigunayath, Prime Minister Narendra Modi's two-day visit to New Zealand was the first official visit of an Indian Prime Minister to that country in 4 decades. It has been hailed as a historic milestone. How would you describe the significance of this visit?
10: I think that the very fact that the visit has taken place now in a new kind of a global order, a new kind of situation that is prevailing, and unfortunately nothing had happened for the last 40 years at the level of the leaders, indicates that how important this visit is. And before that, the Prime Minister of New Zealand had visited India in March 2025. And during that visit, several areas were agreed to. And one of them was a free trade agreement. And in record time, we were able to sign that agreement, which is something very, very important and very, I must say, creditable for that. So these 40 years, I think now we have to catch up for the 40 years. And I think that's what the Prime Minister Modi's visit is going to help in creating a friendship and partnership, which will continue to increase and enhance in more strategic domains.
9: New Delhi and Wellington have elevated their relationship to a strategic partnership, which includes a roadmap to expand ties in the next 4 years. How will this upgrade reshape India-New Zealand ties?
10: As I said, there are normal relationships, transactional relationships with countries, and then there are strategic partnerships. When we talk of a strategic partnership, first thing it displays is that there is a trust at the leadership level and at the country-to-country level. And that's precisely when you enter into a strategic partnership in a country, because there are many sensitive areas, whether it is defense, whether it is security, cyber security, or scientific collaborations, or innovation, or maritime security. All these domains are actually included in the strategic partnership. And therefore, it is very important that these partnerships are then nurtured and newer areas and the roadmaps are identified for exploring newer areas of cooperation, whether it is in space, whether it is intelligence cooperation and creating more defense partnerships or in the maritime domain awareness. So I think all these put together will contribute to a more closer and enduring partnership between the two countries.
9: India and New Zealand have set a target of doubling bilateral trade in goods and services to approximately 35,000 crore rupees by 2030. And the two also signed a free trade agreement some time ago. Let's first listen to what the Prime Minister said about the FTA.
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे
9: Ambassador Trigunayath, what role these decisions play in boosting trade and economic partnership between the two nations?
10: Well, I think that the free trade agreement, which includes both the goods and services, provides a framework for cooperation, removing all the obstacles that usually are placed, be it whether in the name of tariffs or non-tariff barriers, those are taken care of when we agree to sign a free trade agreement, where this is a win-win partnership and both countries' businesses gain from it. But at the end of the day, this will all depend on the businesses. And I think the business delegation had accompanied Prime Minister and the Prime Minister's addressed that there are new opportunities now in different areas, and those should be capitalized by the businesses for enhancing the trade or doubling it by 2030. Now, that has to be done by the industry and it has to rise to the occasion. Secondly, as far as the talent acquisition or talent transfer is concerned, or for that matter, we call it migration and mobility, which becomes an integral part of the such agreements, is also very useful because, as you know, that the Indian professionals have been contributing a great deal in the newer areas of sunrise sectors in various countries, including in the Western countries. So newer opportunities are arising for both sides to collaborate

0: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सौंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, या कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो जोगनाथो चोरी नोंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा।

0: आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार की सेवाएं कार्य करते हैं।
1: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढौरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढौरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भौर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहियों में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारम्भ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुरू किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का बाराग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो भी रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेद पथी पांचन होता है, आम, केला, कनस, सपुरी, सपटा, ये पांच प्रकार फल भोग होता है, पक्षी होता है, मुंह और नारियल का कोरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा

0: हुआ द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, काल ध्वज, देवदलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
2: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के एक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्वानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेकर सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कर दिया।

0: डॉक्टर नितेंद्र विक्रम सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली अम्रपाली और संसेशन के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में तो दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखे दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी है। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर ले तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर ले वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गाँव में। और भी बहुत सारी वेराइटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
2: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
3: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, रामकेला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर सी तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
4: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आईस। वहाँ हमार लालन पालन हुईस। हमर माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुकलाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग ले चला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए की जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ। माँ गावे है आरू।

रहे हूँ, बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के दनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से, बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम। और वो ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। और ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने बरा थे कि वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा में बैठ। कतका कन सुने ऐसे की कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोलीस कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके इसी की। आज भी गुंजा थे, टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ। तो

ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोह मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उन मन रोना शुरू कर देते हम उतका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उगरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है आगे बढ़ मालिक के हाथ।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझने लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जो शिला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण हुई है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते।

0: काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐति तेती बहका सकत रहे हूँ, ओमे अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे मा हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो अनादा थे मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते तो बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गार्डर ही ते गार्डर भी बेटा बहुत सुंदर गा लेते बोले बढ़ावा भी दो। तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लगते लेकर मुला सिखा के दे दो
1: तब भी करत मैं धुरला भेटे हूँ और नर्स

0: गौरी लभेते हो क्यों टलभेते हो गंगा माँ।
1: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।